0: चला यार।
1: सही है सही है। बाकी सारी फेक लगे देख के तुझको ब्रेक लगे, दूर दूर से ठीक है रानी पास आऊं तो सेक लगे।
2: पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
1: पके पेड़ पर।